कर्मं कर्मं सब फूकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो तहवै विण सतगुर वाट न पावे पौड़ी।

68 तीर्थ जे नहावै उतरै नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़त हे भले संसार, तिना नेहो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसह रंग रोवै चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे की रिवाज सचेना।

0: की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

करते रह। साचा नाम मेरा धारो, सच नाम धार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया। जिन ऐसा सब जाइया, सदा कुरबान किता, गुरु बेटो हसदियाँ वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा धारो, वाजे पन सब कर्ष पागै।

आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सोरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बानी, संत साजन पये सर से पूरे गुर ते जानी।

राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सावते बड़ा सत गुरु नानक जेल कल राखी मेरी। सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवां।

सच एक ओहकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक हुसी पी सच।

और ना ही कोए, ना को हो आ ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जैना देना करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावे बायस नात, राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

विकास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग बड़े रे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सिंह मिल संगत गुण परगास जिना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी वास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहो जनन पिता लोक सुत बैंता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक समाही ठाकुर कहे मन पाओ करया ऊड़े ऊड़ आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मने में ही सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परवरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परवरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहीं तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्या वहीं हर त्या वहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप सुमासी
से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेहंता, तेरे भगत सलाहुण तुद जी। हरे

अनंता तेरे अनेक पढ़े बहुसिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे सृष्टि सब उपाई जी तुदे आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सवनी ते आया जिस नौ कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग वाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ मिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खे वियोग मिल बिछुड़या संयोगी में जिस नौ तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर्व रड़े भैले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकजो मोह पग नहीं चले हम दिख तहें डूबियले मान एक न चेतस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहो न हो जति सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरना जेना तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काय तिर किते ना काम मिल साध संगत पाज केवल नाम स्रं जाम लाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहो जप तप संजम धर्म न कमया सेवा साध न जन्या हर राया कोहु नानक अम नीच करमा शरण परे की रखो शर्मा जप तप संजम धर्म न कमया सेवा साध न जन्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार
श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आभा दे मुहि बचाब हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबैर इनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आवाद मुझे उवरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे रखन हारे, साहेब संसहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सा लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव देंद जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाहे ते दुखी, सुख पाहे साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के बड़ बड़ की जन्ने, जब युद्ध करक करा करतारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जब आकर्ख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरलम, जानत बेद बेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनीर अनादि संभ, ताका मूड़ उचारत पिदा, जाको पेव नवावत बिदा, ताको कर पाहुण अनुमानत, महामूड कच्छ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न पिव, आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा,
अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंप आजुगा स्रू स्यंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता शुक्ल मलेच करो रण गाता जे अस्तु जे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट नह रक्षा हुए ताही सब कल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल कृपा दृष्ट तन जाहे न हरिओ ताकि ताप तनक मै हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहाशवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसती ताही ओवारा जिन नर नाम तिहारो कहा धार दे दुष्ट दुख तेरा खड़ के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर्वठ मोह सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सरठ मोह सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कहूँ आंख तरह नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहे हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्द तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब मिसारना अंगीकार, ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सवना गल्ला सिमरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे, घर ता तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिनो भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मने वसिया, जिनो इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दिया एह बड़िया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो। वाजे पंशब तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख होआ। तित कर अनहद बाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा भारे बूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनुहद तूरे, सुनते पुनी कहते पवित, सतगुर रहा भारे बूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनुहद तुरे। मंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमित नाम ठाकुर का भयो, जिसका सबसे दारो, जे को खावे जे को पहुंचाए, तिसका होए उदारो। एहे वस्त जी नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसरो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही,
आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरा मत होई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ताके जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कही अत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइये आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण बस है मेरा ही आरे संग पुनिता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक के सुख एही जन के चरण बस है मेरा ही अरे संग पुनिता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक के सुख एही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैरो अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरप्रसाद तुद आगय अरदास हमारी दियो पिंड सब तेरा

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैपं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकाना श्लोकी महले पहले के लिखे टूडे हसराज कीर्तनी श्लोक महला पहला मल्लेहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानसते देवते किए करतना लागे वार महला दूजा
1: जे सौ चंदा उगवै सुर चढ़े हजार इत चरण होंदया गुरु बिन भोर अंधार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचे

0: पर श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर कै वचन सत जी तारो मानस जन्म देहे निस्तारो गुर जहाज केवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी लहना पंथ धर्म का किया अमरदास भल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चोह जुग गुर सेवा कर फल लईयं बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कईयं परतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतित जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं
1: संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा एह आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन के तिन को पदवी उच्च पई

परगास पया जस जन के, इक पड़े सुने गावे पर बाते करे इशनान, इशनान करे पर बात सुद मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस को, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रहया पूर बहुविध वर्णं, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारन तरणं, जिन्हू बात निश्चल त्रु जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुद्र रुद्र किन इक में, जल हर बिंब जुगत जग रचा।

सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके कौ तू कद का ब्रह्मा विष्ण सिरे ते अग्रत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जून उपाई रिजक दिया सबहू को तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग।

0: हसे आप ही चित्वे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थम्मण आपे किया कट कट बासा आपे नर आपे फुनारी आपे सार आप ही पासा गुरमुख संगत सबे विचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पया।